0: भइरहेको छु खाने बेलामा बड प्रेममा फसेर अन्धो भने अहिले निस्कन्न भन्छस तेरे दवान मैंने देखी थी हाँ ला ये करे चाहे ना करे ला
1: हाँ मुझाचा
0: हाँ जल्दी जल्दी निकल जल्दी निकल निकल निकल जा हाँ हाँ ये दरवाजे से निकल जा और अंदर वो दरवाजा बंद कर दो
2: जी हाँ मार्के कहाँ

0: मेरे घरे थे मैंने देखो छू साला कुत्ती खाने बेला में बड़ा प्रेम में फसेर अंधो बने फाइले निस्कन भन्छस
1: निस्किन आमा म कहाँ जाउ नि
0: क्या बोली तू क्या तेरे दवान मैंने देखो छू हां ला ये करे छे न करे ला
1: हां म जान छ हां म जान
0: जल्दी जल्दी निकल जल्दी निकल निकल
1: नहीं
0: निकल जा हां हां ये दरवाजे से निकल जा निकल जा और अंदर वो दरवाजा बंद कर दो
2: जी हाँ मार्के।